0: era mani, la de la mania. Nampaknya tu bersama DJ Pretty Ellie malam ni.
1: Mujhe kuch kehna
0: hai. Film Bobby pula ya. Mujhe semangatkan suasana malam koma.
1: Mujhe
0: kuch kehna hai.
2: Mujhe bhi kuch kehna hai.
1: Pehle tum.
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ